हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

कहते हैं इश्क खुदा है, दुआ है, वफा है। कल 11 बजे कंस किला, अगर तुम नहीं आए तो इश्क फना है।

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560220279।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: 103 थोपलो 8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टूडियो टाइटेन
2: अहिले राति को 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: studio Sanchez.
1: Aile, Vienna ko 5 bajyo.
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301